असंख मूर्ख अंध घोर संघ जोर राम घोर संखे अमर कर जाए जोर असंखा गाल बढ़ हत्या कमा

छड़ी हो एक मन लगती आई है फलते वे हो पाए जे वे हिकार कमाई जे हो प्रभु लिखा था तो वो तो गांधी पाई है मत थोड़ी सेवा गवाई है मत थोड़ी

साम कहे सितंबर स्वामी सच माचे साच रहे सबको सच समावे रि करे परपू राम नाम देवा मसूर ना लिये प्रछ जाय नानक तुम खंतर पाए जज मह जोर चले चंद्रावल कान कर संजा दम पे।

दर्शनों परस है गुरु के जन्म मरण दुख जाई सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तनासरी

0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
1: हर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया
1: सगल त्याग मन मदे फिरिया
0: अनेक प्रकार की ये बहु जतना
1: बोन दान हो में वो रतना
0: शरीर कटाई हो मैं कर राती
1: भारत नेम करे वो पाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे

0: संयमत साधन।
1: निमक निमक कर सिर कटावे,
0: तभी हमें मैल न जावे।
1: हर के नाम संसर्ग छनाहे,
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे।
1: मन कामना तीर्थ देह छुटे,
0: दर्प माना मानते हुटे।
1: सोच करे

0: नानक ओ प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सत्संग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सोई बनिए सब ते ऊंचा
0: जाका मन हुए सगल किरीना
1: हर हर नाम तिन कट कट चीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जन समत्र

0: धात माया के हेत
1: सर पर होवत जान अनेत
0: की छाया से उनंग लावे
1: ओ बिन से ओ मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालन हार
1: लपट रहो ते अंध अंधार
0: सो जो लावे ने
1: ताको हाथ न आवे की
0: मन हर के नाम की प्रीत सुख दाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन तन कटंब

0: दुखा दया सबरू गवाते दुखा काट
1: जिन्ना सास गया
0: सदा विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तुम।

सोर अठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कार पार तन लियावै सुत दारा प्रयान लुटावे मन मेरा भूलै कपट ना कीजै अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ सिन सिन तन सीजै जरा जनावै तब त्रियोक कोई पानी ओ न पावे कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपे सवेरा संतो मान पवन सुख बनयाओ किस जोग प्राप्त गनयाओ रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मोद लिए दरवाजे बाजी अलय अनहद बाजे कुंभ कमल जल भयाओ जल मेटाओ बकरयाओ कहो कबीजन जानिया जो जानिया तो मन मानियाओ राग सोरठ भूखे भगत न कीजे जे माला अपनी दीजे ओ मांगो संतन रे नाम नाही किसी का देना मधु कैसी बने तुम संगे आप ना।

हम का सम्रम जनाया अनक कटक जैसे फूल परे अब कहते कह न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वै सोई कह रविदास हाथ पर निराय सहज हुए सोई जो हम बंदे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम अराधे माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहा करहोगे ऐसी रहाओ मीन पकड़ो फंख और काट्यो रांध कियो बोबानी खंड खंड कर भोजन की नौ तो ना बिसरे पानी अपन बापे नाही किसी को

पावर सोच असोच देव सजाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत आंदो कस समझ न परे परमाया।

जौतम दीवरा तोहम बाती, जौतम तीर्थ तोहम जाति, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी, जह जह जाओ तहां ते सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुमरे भजन कट जम फंसा, भगत हेत गावे रवदासा, जल की पीत पवन का थंबा।

पवन चवरो करे सगल बनराई फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाप खंडाओ तेरी आरती अनहत शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूर्त नन्ना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध

0: प्रीत प्रेम उपजे प्रीत प्रेम रस चाओ।
1: त्रासरी महला चौथा ईसा पूर्व सर्व सुख दाता हारो जाके वास है काम ते नाल सुवै सहर
0: त्याई। भक्त जना के मन

स्वामी की शोभा आनंद सदायोलास रहाउ चरण शरण पूर्ण परमेश्वर अंतर्जामी साखेओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखियो उतना श्री महला पंजवा जह जय पेखो तय हजूर दूर कत हो न जाई रावरिया सर्वत्र मैमन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछड़ै सो संगी गणियाय बिन सजाए जो निमुख मै सो अल्प सुख भनियाय रहाउ प्रत पाले अपयाओ दे कस ऊण न होई सास सास संभालता मेरा प्रसोई अशल अशेद अपार प्रभ ऊचा जाकार रूप जप जप करे आनंद जन

यो ते सो न लाइय हीत जाको किस नाही बीत अंत की बार ओह संग ना चालय मन तन तू आराध हर के प्रीतम साध जाके संग तेरे बंधन छूट गहो पार ब्रह्म चा सरन हृदय कमल चरण अवर्यास का सब पटल ना की।

के कमने सदारी स्वागत की अवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गवारी रहा। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी के बुढ़ते आंद नानक प्रभु काढ़ तो साजना श्रृंगारी इतना श्री महला परिवार।

चंचल मन दै दिस को तावत अचल जाहे ठहरानो। कहु नानक हे वेद को जो नर मुकत ताहे तुम मानो। त्रासरी महला नौवा। अब मैं कौन उपाव करो जेहे बिद मान को संसा चूके पौ निद पार परो रहाओ। जन्म पाय कासो पलो न कीनो ताते अधिक डरो। मन बाच कर्म हर गुण नहीं गाए जह जी सोच तरो। गुरमत सुन कस ज्ञान उपजयो पास ज्यो उदर पर हो। कहो नानक प्रबिरद पछानो तब हो पतत तरो। त्रासी महला पहला। कर दूजा अष्टपदियाँ क्यों कासो गुरु प्रसाद गुरसागर रत्नी पहर पूरे अमृत संत चुगे नी दूर हरा चोग चुगे पर भावे। सर्वर में हंस प्राण पात पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए। कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छुड़ पे निरंकारी। मुक्त पदार्थ हरा चाखे आवन जान रहे गुराखे। सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर में हंस हंस मै सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी वैसे नार न पुरख कहू को कैसे। तिरपन जोत रहे लिव लाई सुर नर नाथ सचे सरनाई। आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज विचारी।

मंडल महयाए जन्म पदार्थ दुबदा खोवै आप न चीन स ब्रह्म ब्रह्म रोवै कह तो पढ़ तो सुन तो एक तीर्थ धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय सुमाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागे गुर कह शब्द परम पाओ भागे सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचा साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलया परवान ना ते सुमरन नयावन जानू ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा तय अवरन कोय गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर भेटे मर आइये जाइये रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ रहावे अकथ कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवरनी कारा सचो ठाकुर सच प्यारा तन मै मनवा मन मै साचा सो साचा मन साचे राचा सेवक प्राप के लागे पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखै हठ नाम पति जय नाम बो भेखै घड़ भांडे जिन अमृत पायाओ प्रेम भगत प्रभ मन पति आयाओ पड़ पड़ फूलै चोटा खाहे बहुत स्याण पयावे जाए नाम जपे पोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिलाओ तीर्थ बनवासा परम डोलत पय उदासा मन मैल सूचा क्यों होए साच मिल पावे पत सोए आचारा विचार शरीर आदि जुगा सहज मन तीर पल पंकज मैं कोट उधारे कर कृपा गुरु मेल प्यारे किस आगे प्रत

0: साध संगत के अंचल लावो भिख मंद दी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृपत नानक दास पावत हर नाम रंग आपरनी जद श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवै पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगण बिन सह हर सेवा निचल गोविंद धाम भगवंत भगत को पहो किस नाही आदर देत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सतखाम चरण कम हृदय गो नानक सुख सुन विश्राम जय श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद भूलो मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लागो ते ते आप बंधायो रहाओ समझ न परी बेखे रस रस्यो हर जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहे न बंद खोजन को तायो रतन राम काटी के पीतर ताको ज्ञान पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरता जन्म गवायो जय श्री महला नौवा हर जू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास हो पयो अरंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ महा पतत मुगद लोभी फोन करत पाप अबहारा पै मरबै को बिसरत नाहे न ते चिंता तन जारा की ओ पाप मुगत के कारण दह दिस को उठ तहाया काट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया नाहे न गुण नाहे न कास जाप ताप कौन कर्म अब कीजे
1: वाहिगुरु साहिब जीओ राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मनी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सह सेती मनमजियां माधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द तां गाव हरी कीरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया